अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें कर

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: की कमर है, फिर की नजर है, पंत की कमर है, फिर की नजर है।
1: Yes, you said good. This is Ujala Radio, the beat for news.

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।

जाना रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती। और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

नमस्कार। इस विशाल विश्व में जहां जहां मानव बसा है, वो किसी भी धर्म पंथ या किसी भी भाषा का हो, इन सब का विश्वास है कि संपूर्ण सृष्टि में एक ऐसी महान शक्ति है जो पूरे विश्व को संचालित करती है। हमारे भारतवर्ष में सदियों से देवी देवताओं के मूर्ति को ईश्वर का प्रतीक मानकर उसकी पूजा उपासना करने की परंपरा चलती आ रही। मंदिरों में और घर घर में पूजा अर्चना जप तप यज्ञ हवन और विविध प्रकार से अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है।

एक बार असुर राज भस्मासुर भोले शिव शंकर की भक्ति करके भोले भंडारी को प्रसन्न कर लेते हैं और भोलेनाथ उनको दर्शन देते हैं, वरदान मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन भस्मासुर उनके साथ माँ पार्वती को देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन उनको कैसे मांगे ये विचार करके एक वरदान मांगते हैं कि जिस किसी के सिर पर मैं हाथ रखूं वो वहीं भस्म हो जाए। भोले भंडारी तथास्तु कहकर चलने लगते हैं तो भस्मासुर उनके पीछे शिव पर हाथ रखकर भस्म करने के लिए आ जाता है। भोलेनाथ समझ गए कि मेरा ही वरदान मुझ पर आजमाना चाहता है। भोलेनाथ अपने प्राण बचाने के लिए भागते हैं और एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। भस्मासुर गुफा के द्वार पर बैठ जाते हैं। ये सब लीला नारायण देख रहे थे। भगवान विष्णु नारायण तुरंत मोहिनी का रूप बनाकर भस्मासुर को नाचने के लिए कहते हैं और मग्न होकर भस्मासुर नाचते नाचते अपना हाथ अपने ही सर पर रख देता है और भस्म हो जाता है। तो ऐसे भोले भंडारी हैं मेरे भोले बाबा।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल।

मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

मौसम मस्ताना और रास्ता अनजाना। आशा जी एंड दिलराज कौर से आप सुने फिल्म का नाम सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता, और ये है उजाला रेडियो।

और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू या इट्स योर बॉय बंचा सामने में निकिता गांधी एंड दिस सिंगल सॉन्ग रिलीज गाना और गाना का नाम है जुगनू क्लिंक लेकर क्लिंक फॉर ट्रेवलक एंड पास्ट परफेक्ट इन एलक मोमेंट फॉर द डे
1: पहाड़ी दाते ब्याह हो गया पतली लग
0: या ऑफ द प्लेलिस्ट हियर सो सुखविंदर सिंह
1: के दाल में नमक भूल गई के दाल में नमक भूल गई जद खिंच के ओ जद खिंच के छेड़ने आँख मारी
0: ये रस्म फन सुखविंदर सिंह इन तुम्बे ते जुम्बा या गाना का नाम है तुम्बे ते जुम्बा या एन फील गुड सॉन्ग एन हेलके एनर्जीक गाना

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अब यहाँ से हम अपना प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं, जो आम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। आप जहाँ से भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप सभी को एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। नख़्मे जो हमने चुने हैं सुनवाने के लिए, उम्मीद है कि आप इसे लुत्फ उठाएंगे। शुरू करती हूँ ये दुआ से। फासले फासले इंसान को दूर ज़रूर करते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं दिलों में, लफ्ज़ों में, दुआओं में और प्रार्थनाओं में भी। दुआ है ऐ बुलंदियों की बादशाह, ऐ रब कायनात, मेरे प्यारों को हमेशा खुशहाल, तंदुरुस्त और आबाद रखना। या रसूले खुदा आसरा दीजिए।

रूहानियत अंदाज में नात नबी पेश था। आवाज़ थी मोहम्मद शफी नियाजी कवा की। कलाम था शायर अनवर फरूख आबादी का। मौसिकी मम्मी बच्चू की थी। अब हम इसी रूहानियत अंदाज में महान गायक श्री अनूप जलोटा की सुरीली आवाज़ में भक्ति संगीत सुनवाते हैं। दर्श है कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम परे। कलाम है पंडित रामचंद्र भगोरा।

प्रोग्राम की शुरुआत में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ, जब चाहूँ तुम्हें मिल तो नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ, है ना। पर आज तुम याद बेहिसाब आए।

शायराना अंदाज में पेश थी ये गजल। महान शायर फैज अहमद फैज का कलाम था। आवाज़ थी गजल नवाज उस्ताद मेहंदी हसन साहब की। सुकून मिलता है जब उनसे बातें होती है। उदास रातों में एक वो ख़ास रात होती है। खामोश होते हुए भी जब वो मेरे पास होते हैं और जब वो मेरी बातें सुनते हैं तब मेरे लिए वही पल पूरी कायनात होती है।

तुझे। रुमानियत अंदाज में आपने अभी ये गजल सुनी। शायर शकील बदायूनी का कलाम था। मौसिकी मौसिका नौशाद अली की थी। जुदा होकर भी दोनों जी रहे हैं एक मुद्दत से। कभी कभी दोनों ही कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर अब क्या हुआ? बहुत दिन हुए तुमको देखा नहीं।

खूबसूरत गायिका सुधा मल्होत्रा की सुरीली आवाज़ में पेश थी ये गज़ल। दर्श को लिखने वाले थे शायर इब्राहिम अशक। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपको सुनहरी दौर के सदा बहार गाने सुनने को मिलते हैं, गाने जो दिल को छू जाए, चाहे दर्द भरा हो या खुश मिजाजी नगमे। हम आपको ज्योतिका रॉय की आवाज में एक गीत सुनवाते हैं। तर्स है, मेरे वीणा रो रही है, सारी दुनिया सो गई, सुख सजिया सूनी भई, सजिया मतलब सेज, सुख सजिया सूनी भई है, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो पिया। तर्स पर आप गौर फरमाइए और लुत्फ उठाइए इस गीत से।

अमर गीत पेश था गायिका ज्योतिका रॉय की आवाज में। संगीत से सवारे थे संगीतकार कमल दास गुप्ता। अब आइए सुने गीता दत्त से ये गीत।

0: फिल्म कमांडर में से ये गीत पेश था। संगीत देने वाले थे संगीतकार चित्रगुप्त। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम चाह कर भी अपनी याददाश्त से नहीं मिटा सकते। मुझे इख्तलाफ है, इख्तलाफ मतलब मीनिंग फसखिल, मुझे इख्तलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं वक्त हर जख्म का मरहम है।
1: इनको पलकों पे ना तो

अनमोल नगमा पेश था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सजाया संगीत, बोल शकील बड़ायुनी का था। खूबसूरत अंदाज में सुनवाते हैं ये दो गाना और आप इससे लुत्फ उठाइए।

सदाबहार दो गाना पेश था। फिल्म चोरी चोरी का गीत था जो राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया था। फिल्म मिडनाइट में से लीजिए अगला दो गाना तलत महमूद और गीता दत्त की आवाजों में।

गीता दत्त और तलत महमूद की आवाज़ों में पेश था ये दो गाना। टपक पड़ते हैं आंसू जब अपनों की याद आती है, ये वो बरसात है, ये वो बरसात है कि जिसका कोई मौसम नहीं होता।

आप सभी सुनने वालों को निशा फिल्मी दुनिया में इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। इस हिस्से के प्रोग्राम फिल्मी दुनिया में कोशिश है मेरी उन महान फनकारों के बारे में रोशनी डालने को जिन्होंने अपने फन से, अपनी कला से हम सब के लिए खूबसूरत यादें छोड़ गए हैं, जिन्होंने अपने काबिलियत से फिल्मी दुनिया की ऐतिहासिक किताबों की पन्नों पर उनका नाम सुनहरी अक्षरों में चमकते हैं। उन सब में गिनती है महान संगीतकार ओपी नैयर। ओपी नैयर जिसके संगीत में कुछ खासियत है, एक अलग सी पहचान है। पिछले प्रोग्राम में आपने सुना कि ओपी नैयर ने सेवनफेतक में लाहौर से अमृतसर चले गए, लाहौर जो अब पाकिस्तान के हिस्से में गिनती है। बंटवारे के बाद उनके वालदैन अपने परिवार के साथ अमृतसर में रहते थे। हमने ये भी बतलाई थी कि ओपी नैयर को सिर्फ संगीत में दिलचस्पी था, संगीत के दुनिया में वो अपनी पहचान बनाना चाहते थे। इस सपना को पूरा करने के लिए उसे अमृतसर से बॉम्बे जाना था। उसने ये सब सोचकर बॉम्बे का टिकट खरीदा और रेलगाड़ी से बॉम्बे चले गए अपना तकदीर आजमाने। बॉम्बे में कितना मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ा, एक गीत के बाद बयां करेंगे। नगमे जो आप प्रोग्राम के दौरान सुनेंगे सब ओपी नैयर के सजाए नगमे हैं।

0: ने दर बदर भटकता रहा, फिल्म स्टूडियो की आसपास फिरता रहा। फिल्म में उसे अदाकारी करने का मौका मिलता तो वो भी उसे मंजूर था। फिर एक दिन अचानक उसे अपना बचपन का दोस्त कृष्ण कुमार से मुलाकात हुई। कृष्ण कुमार उन दिनों फिल्म कनीज तैयार कर रहा था, जिस फिल्म में मौसिकार गुलाम हैदर और हंसराज बहल संगीत सजा रहे थे। कृष्ण कुमार ने ओमकर प्रसाद से कहा, अब तुम्हारे भटकने का दिन खत्म हो गया, मैं तुम्हें दो महान संगीतकारों से तारुफ कराएंगे। तो इसी तरह ओमकर प्रसाद को मौका मिला फिल्म कनीज में ऑर्केस्ट्रा के साथ धुन बजाने को। फिल्म कनीज बनकर जब दिखाई गई पर्दे पर तो दर्शक फिल्म को नहीं पसंद किया। ओमकर प्रसाद मायूस होकर रह गए। कहानी दिलचस्प है, एक गीत के बाद बातें आगे बढ़ाएंगे।
1: जब

मुकेश की आवाज और ओपी नैयर की संगीत पर पेश था ये गीत। तो जैसे मैंने गीत से पहले कहा, चल पड़ा था ओपी नैयर अकेले बॉम्बे अपना तकदीर आजमाने। बॉम्बे स्टेशन पर जब कदम रखा तो किस तरफ, पर इतना उसे अपने आप पर यकीन था कि उसे संगीत की दुनिया में कदम रखना है। शुरू शुरू में ओपी नैयर

किशोर कुमार से आपने अभी ये गीत सुना। इस गीत से पहले आपने सुना कि फिल्म कनीज की नाकामयाबी के बाद ओमकर प्रसाद परेशान रहता था, बहुत मायूस था। ऐसे में उनकी मुलाकात गीता दत्त से हुई। ओमकर प्रसाद की परेशानी की वजह सुनकर गीता दत्त ने कहा गुरुदत्त से मिलने को। गुरुदत्त फिल्म बास की शूटिंग कर रहा था। इसी तरह ओपी को एक बार फिर मौका मिला इस फिल्म में संगीत से मदद करने को। पर इससे पहले ओपी को दो फिल्मों में संगीत सजाने का मौका मिला था, फिल्म आसमान और छम छमा छम। पर ये फिल्में आवाम नहीं पसंद किया। आइए मिलकर सुने ओपी नायर का पहला सजाए गीत।

फिल्म आसमां में से आपने अभी ये गीत सुना। गाने वाली थी गीता दत्त। इस गीत को ओपी नैयर ने सजाए है। ये ओपी नैयर का पहला सजाया गीत है, पर दर्शक ना इस फिल्म को और ना ओपी नैयर की सजाए संगीत पसंद किया। सुनहरे दौर का प्रसिद्ध पेशकश हिदायतकार और अदाकार गुरु दत्त फिल्म बाज तैयार कर रहा था। गीता दत्त की बात मानकर ओपी नैयर ने जब गुरु दत्त से मिला तो उसने इनकार नहीं किया और पूरा यकीन के साथ गुरु दत्त ओपी नैयर को मौका दिया फिल्म बास के नगमे सजाने को। आइए हम आपको फिल्म बास का गीत सुनाते हैं, फिर हम कहानी आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म बास का गीत आपने अभी गीता दत्त की आवाज में सुना। इस फिल्म के सभी गाने ओपी नैयर ने सजाए हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद फिल्म बास सिनेमा घरों में चला नहीं। एक बार फिर ओपी नैयर मायूस हो गया, अब बेरोजगार था। इसी दौरान उनका शादी भी हो गया। कब तलक वो अपने बीवी को झूठी तसल्ली दिलाते? तो उसने फैसला किया अमृतसर वापस जाने को। पर वापस जाने से पहले ओपी गुरुदत्त से पैसे के बारे में जिक्र किया। फिल्म बास दर्शक नहीं पसंद किए, पर गुरुदत्त ओपी नैयर की संगीत से खुश था और उसे फिल्म आर पार में दोबारा मौका दिया संगीत सजाने को। हम आपको गीता दत्त की आवाज और ओपी नैयर की सजाए संगीत सुनाते हैं।

शमशाद बेगम की आवाज और ओपी नैयर का भरकता संगीत से संगीत के दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ। फिल्म आर पार के बाद ओपी नैयर पीछे मुड़कर देखा नहीं, उनके संगीत से एक नया दौर शुरू हुआ। संगीत में नयापन था, नजाकत था, ताजगी था। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे प्रोड्यूसर्स अब उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। ओपी नैयर, शमशाद बेगम, गीता दत्त, मोहम्मद रफी या आशा भोसले को ध्यान में रख कर संगीत सजाते थे। आशा भोसले आज जिस मकाम पर है, बुलंदियों पर है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हाथ ओपी नैयर का है। आइए सुने एक साथ दो महान फनकार की खूबी।

ओपी नैयर की संगीत और आशा भोसले की आवाज तहलका मचा दिया था। कैसे हम भूल सकते हैं नासिर हुसैन की पेशकश तुमसा नहीं देखा और फिर वही दिल लाया हूं की संगीत। ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर ओपी नैयर की कुछ तराने मतलब सॉन्ग्स रेडियो के जरिए सुनाने की मना कर दिया था। वजह ये थे कि संगीत में ज्यादा विलायती का असर था। ओपी नैयर अपने असूलों पर अटल थे। जब वो महसूस किया कि अब यही वक्त है बॉम्बे से चले जाने को, तो वो अपने बीवी बच्चे के साथ बॉम्बे छोड़ दिया। ओपी नैयर के चार बच्चे हैं, तीन बेटियां और एक बेटा। उनकी बीवी सरोज मोहिनी नैयर भी गीत लिखती थी, जैसे ये गीत।

प्रीतम आन मिलो, इस गीत का तर्ज सरोज मोहिनी नैयर ने लिखा और ओपी नैयर ने संगीत से सजाया। ओपी नैयर अपने बीवी बच्चों से अलग एक दोस्त के साथ विरार में रहता था। महान संगीतकार ओपी नैयर 28 जनवरी 2007 में दुनिया को अलविदा किया। उनके संगीत में आज भी वही ताजगी है, दिल में एक लहर से उठती है। जब तलक कायनात रहेगी, ओपी नैयर की संगीत फजा में लहराते रहेंगे। अगले प्रोग्राम में हम फिर एक ऐसे ही महान फनकार के बारे में बयां करेंगे।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान प्रसिद्ध मौसिकार ओपेनहाइमर की फिल्मी सफर के बारे में बयान किया। हमने कोशिश किया उनकी निजी जिंदगी पर जरा सा रोशनी डालने को। उम्मीद करती हूँ कि आप इस हिस्से का प्रोग्राम पसंद किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं लता मंगेशकर से ये गीत।

फिल्म जीवन मृत्यु में से ये नगमा पेश था। संगीत देने वाले थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब आइए तलत महमूद से सुने ये गीत।

फिल्म रफ्तार में से पेश था ये नगमा, शिवराम की मौसीकी थी और शायर नक्शब का कलाम। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। आपको इस प्रोग्राम में कई शैलियों में गाने सुनने को मिलते हैं। छोड़ दे आशिक प्यार, अब पैसा कमा, इश्क अच्छे हालात में अच्छा लगता है, पैसा है तो सब कुछ है मेरे दोस्त, वरना यहाँ रिश्तों का मतलब बदल जाता है, क्योंकि इंसानों ने पैसे के लिए आपस का प्यार मिटा डाला।

मधुर आवाज में पेश था ये गीत रवि का संगीत रचना, गीत रचना शायर साहिर लुधियानवी का था। अब लीजिए पेश है मुकेश जी से ये नगमा।

कमाल का गीत पेश था फिल्म दुल्हा दुल्हन में से ये गीत लिया है। कल्याण जी आनंद जी संगीत से सवारे थे, शायर इंदिवार का लिखा तर्ज था। अब आइए सुने महेंद्र कपूर से ये नगमा।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सब रंग आप सुन रहे हैं, जो आम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम में आपको कुछ सुनी कुछ अनसुनी गाने सुनवाती हूँ। हाँ, गाने जिसे सुनकर मन शायद बैठ जाए या बाग बाग हो जाए, और ऐसे प्रोग्राम आपको युवा रेडियो के जरिए सुनने के मिलते हैं। तो आइए सुने मोहम्मद रफी साहिब और आशा भोसले की आवाज़ों में अगला दो गाना।

संगीत का नौशाद अली का सजाया संगीत और शायर एस बिहारी का लिखा तर्स में पेश था ये दो गाना। अगला जुगल गीत पेश है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अभी आपने मुकेश और लता मंगेशकर से ये दो गाना सुने। इसी अंदाज में आइए सुने अब दलत महमूद और लता मंगेशकर से ये गीत।

अभी आपने संगीतकार शंकर जयकिशन का सजाया संगीत में ये दो गाना सुना। तर्ज को लिखने वाले थे शायर शैलेंद्र। क्यों दिल में बस के दिल को दुखाते हो तुम, किस कदर कदम कदम पे आजमाते हो तुम, हर पल रहते हो आंखों में तुम एक सपने की तरह, फिर क्यों इन्हीं आंखों को रुलाते हो तुम।

बार गीत पेश था, सचिन देवबर्मन संगीत से सवारे थे, तर्क को लिखने वाले थे साहिल लुधियानवी। अब आइए सुने किशोर कुमार से ये गीत।

नगमा पेश था गाने वाले थे किशोर कुमार। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत रचना था, तर्ज को लिखने वाले थे शायर आनंद बख्शी। किस तरह होता है मुमकिन ये गवारा करना, दिल में बसे हुए लोगों से किनारा करना। लोग कहते हैं कि हम तुमसे किनारा कर ले।

संगीत का रोशन का सजाया संगीत था, गीतकार था शायर साहिर लुधियानवी। मोहब्बत मोहब्बत रूह में उतरा हुआ मौसम है, ताल्लुक ताल्लुक खत्म होने से मोहब्बत कम नहीं होती। बहुत कुछ तुझसे बढ़कर भी मयसर था मयसर है, न जाने फिर भी क्यों तेरी जरूरत है।

फिल्म सारंगा में से ये दर्द भरा नगमा पेश था। सरदार मल्लिक की मौसिकी थी, कलाम था शायर भारत प्यास का। अब आइए सुने मोहम्मद रफ़ी साहब से ये नगमा।

फिल्म दो दिल में से ये नगमा पेश था। संगीत से सवारे थे हेमंत कुमार और तर्ज को लिखने वाले थे कैफी अजमी। इसी अंदाज में सुनवाते हैं अगला नगमा।

0: जाने करम।
1: संगीतकार शंकर जयकिशन का सजाया संगीत था बोल शायर हसरत जयपुरी का। तेरे यादों के रास्ते की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा मैं, दिल दिल तड़पता है तेरी खत पढ़कर, अब तेरी खत नहीं पढ़ूंगा मैं। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ।

कभी तो नजर मिलाओ नगमा में चार चांद लगाने वाली आवाज़ थी आशा भोसले जी की, मौसिकी अतनान सामी की। अगला गीत डर भरा गीत है, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

संगीतकार शंकर जयकिशन का सजाया संगीत था बोल शायर शैलेंद्र का। अब आइए सुने किशोर कुमार से, ये गीत और ये प्रोग्राम का आखिरी गीत है।

थे गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टलफिन से परिवार अवतार अक्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 88 साल के आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान जॉनी अवतार के सास श्रीमती शरीता अवतार अक्लू की माँ माइकल और कृष्ण के नानी अश्विता की ननिया सास अरशानो की परनानी अम्स्टरडम की रहने वाली विधवा एसलिन रामदीन अक्लू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। स्वर्गीय श्री रामदेव अक्लू के विधवा थी और पहले पारामारिबो खोनख्रेबस्त्रात के निवासी। अम्स्टलफिन से परिवार अवतार अक्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 88 साल की आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान जॉनी अवतार की सास श्रीमती शरीता अवतार अक्लू की माँ माइकल और कृष्ण के नानी अश्विता की ननिया सास अरशानो की परनानी अम्स्टरडम की रहने वाली विधवा एसलिन रामदीन अक्लू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। स्वर्गीय श्री रामदेव अक्लू के विधवा थी और पहले पारामारिबो खोनख्रेबस्त्रात के निवासी। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 2:30 बजे मोरखन वुंसदाख हल्फद्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार्त फ्रजोरखिंग समस्त परिवार रामदीन और परिवार अक्लू और परिवार अवतार के दुख में शामिल।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। आम्स्टरडम से समस्त परिवार हीरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल के आयु में अख्तन ज़ीफ़न तख़यार औत बीबी साहिबा जमीला खातून मीला हीरा बंधु का पति क्लाउड क्लाइड और अनुष्का हीरा के पिता अनग्रासिया नंदलाल का

ससुर इसाबेला एनरिके और शेन हीरा के आजा जिया हीरा का नाना अम्स्टर्डम ज़ुइटोस का रहने वाला श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा की मृत्यु हो गई है अम्स्टर्डम में और इन्हें लोग जीवित में स्टैनली हीरा के नाम से पहचानते और पुकारते थे। पहले पारामारिबो कॉम्बे का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार हीरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल के आयु में अख्तन जीफन तक यार औत बीबी साहबा जमीला खातून मीला हीरा बंधु का पति लड़कन क्लाउड क्लाइड और अनुष्का हीरा के पिता अनग्रासिया नंदलाल का ससुर इसाबेला एनरिके और शेन हीरा के आजा जिया हीरा का नाना अम्स्टर्डम ज़ुइटोस का रहने वाला श्रीमान स्टैनली हीरा के मृत्यु हो गई है और पहले पारामारिबो कॉम्बे का रहने वाला था श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा की मृत्यु हो गई है। स्टैनली हीरा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे आने वाले बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक दोंदर दखाफन फन जीफन तोत आख्तूर उत्फर्ट सेंट्रम वेस्टगार्डे के मुर्दालय ओकमेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे जातरदख आंस्टांग 1 यूर किए जाएंगे। वेस्टगार्डे क्रीमाटोरियम ओकमेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्ट फुरजोरखिंग समस्त परिवार हीरा के दुख में शामिल है।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग अभी अभी खत्म हुआ है और उजाला रेडियो के जरिए आपको जो भी कामकाज दिलाना है स्टूडियो मेल ना info@ujala.net

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ये है उजाला रेडियो, वेलकम बाय उजाला कॉफी चाय मिडडे शो। मैं हूँ लॉर्ड महाबीर, एन हेले गुडमिडडे अलमाल। इट इज वनाग 1 सितंबर, न्यू मंथ, न्यू कांसे एंड नेचुरली हॉलैंड भर में स्कूल शुरू हो गया है सभी के लिए। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम में शेखर कुमार के आवाज में कि जिसका मुझे इंतजार था, एन हीना कोमदान लेकर हम शेखर कुमार के आवाज में शेखर कुमार ओकामेजिक ऑफ उजाला द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड 19 सितंबर इन द मेरवाड़। कोप यू टिकट्स ऑफ टाइम फिया मेरवाड़.nl। Zometeen de headlines, samenjaar, aaskleer, aan de werk die nu kleer. En natuurlijk met Anand Chandrika Singh heb ik het over allerlei zaken die zometeen gaan bespreken. Toen Soen Lee hebben.

तुमसे मिलके, हाँ तुमसे मिलके, फिल्म परिंदा के गीत और गीत के गाने वाले आशा जी एंड सुरेश वड़कर, और ये उजाला रेडियो है। और सुनने वालों, इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए वेबसाइट आप देखें जरूर, उजाला.nl। अब लता जी हिस्सा ले रही है। पुरानी फिल्म अमन से निकाला हुआ गीत।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

से गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टलफेन से परिवार अवतार अक्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 88 साल की आयु में अख्तन तख्तियार औत श्रीमान जॉनी अवतार के सास श्रीमती शरीता अवतार अक्लू की मां माइकल और कृष्ण के नानी अश्विता की ननिया सास अर्शानो की परनानी अम्स्टरडम की रहने वाली विधवा एसलिन रामदीन अक्लू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। स्वर्गीय श्री रामदेव अक्लू के विधवा थी और पहले पारामारिबो खोनख्रेबस्ट्रात के निवासी। आम्स्टलफेन से परिवार अवतार अक्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 88 साल की आयु में अख्तन तख्तियार औत श्रीमान जॉनी अवतार की सास श्रीमती शरीता अवतार अक्लू की मां माइकल और कृष्ण के नानी अश्विता की ननिया सास अर्शानो की परनानी अम्स्टरडम की रहने वाली विधवा एसलिन रामदीन अक्लू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। स्वर्गीय श्री रामदेव अक्लू के विधवा थी और पहले पारामारिबो खोनख्रेबस्ट्रात के निवासी। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 2:30 बजे मोरखन वुंसदाख हल्फद्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार्थ फ्रजोरखिंग समस्त परिवार रामदीन और परिवार अक्लू और परिवार अवतार के दुख में शामिल है।

0: बहुत अच्छे, मगर तुम रुक क्यों जाती हो?
1: मुझे जाने दो अशोक बाबू।
0: नाजो

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम दर्द ए दिल। प्रोग्राम दर्द ए दिल में दर्द भरी गीतों हम आपको सुनाते हैं, उन गीतों जिन्हें सुन करके दिल को सुकून मिलता है या तो दिल का दर्द और बढ़ जाती है। लेकिन पसंद करने वालों जो है तो हमेशा सुनते हैं इस प्रोग्राम को। और सुनने वालों, इस प्रोग्राम या तो कहिए आज का प्रोग्राम का पहला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, पेश है

जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत को आप सुने। 1960 निखंतिन जस्तर की फिल्म बरसात की रात से निकाला हुआ। इस फिल्म में रोशन ने म्यूजिक से या तो संगीत से कहिए इस गीत को सजाए, और उन दिनों इस फिल्म में काम किए मधुबाला के साथ भारत भूषण।

दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, लता जी के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आप सुने इस गीत में। और 1962 1929 जस्तर की फिल्म सन ऑफ इंडिया का गीत नौशाद म्यूजिक से सजाए, और इस फिल्म में काम किए कमलजीत के साथ सिमी गरेवाल और सजीत खान। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, प्रोग्राम दर्द दिल पेश है।

पूछना कैसे मैंने रैन बिताई, मन्ना दी की आवाज में गीत आप सुने। और फिल्म का नाम मेरी सूरत तेरी आंखें। हाँ, 1963 निखंतेंद्रियन शस्त्र की फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें। और इस फिल्म में काम किए उन दिनों अशोक कुमार के साथ आशा परेख और प्रदीप कुमार।

ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, म्यूजिक कंपोजर सचिन देव बर्मन और 1957 की फिल्म प्यासा। इस फिल्म में काम किए उन दिनों गुरुदत्त के साथ वहीदा रहमान और माला सिन्हा। प्रोग्राम जारी है, उजाला रेडियो है, ये प्रोग्राम दर्द दिल।

ये है उजाला रेडियो, वेलकम बैक उजाला कॉफी चाय मिडनाइट शो। मैं हूँ लॉर्ड महावीर, एन हेले गुडमिडाग अलमाल। इट इज वनाग 1 सितंबर, न्यू मंथ, न्यू कांसे एंड नेचुरली हॉलैंड भर में स्कूल शुरू हो गया है सभी के लिए। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम में शेखर कुमार के आवाज में कि जिसका मुझे इंतजार था, एन ही ना कम दम लेकर हम शेखर कुमार के आवाज में। शेखर कुमार ओक अमेजिंग ऑफ उजाला द ग्रेटेस्ट वॉइस ऑफ बॉलीवुड, 19 सितंबर इन द मेरवाड़। कोप टिकट्स ऑफ टाइम via meervaart.nl। Zometeen de headlines, samenjaar, aas klee, aan de werk die nu klee. En natuurlijk met Anand Chandrika Singh heb ik het over allerlei zaken die zometeen gaan bespreken. Toen Soen Lee hebben.

निजाम वक्त हुसैन के आवाज में अभी आपने सुने हैं कि वो दिन याद करो, पेश किया गया है उजाला रेडियो के जरिए। सुन वालों, अभी हम बात करने वाले हैं आनंद चंद्रिका सिंह के साथ कॉफी चाय मेरा शो में। इस वंदा दिनसाग 1 सितंबर और हॉलैंड भर में तो स्कूल शुरू हो गया है। एंड द न्यू माउंट इज बिगनिंग। Een nieuwe maand begint en de nieuwsagenda zit meteen behoorlijk vol natuurlijk. Heel nieuws hier, het hele jaar. Dus we gaan proberen een aantal ervan uit te halen. En ook erbij meer, maar ook bij hem. Baat kan u wel heen met Arend Jendrik Kassin.

0: रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
1: क्या?
0: ओफ, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तू
0: मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
0: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया! रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: By God, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल तुझे कष्ट क्या है।
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।

0: रे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।